0: थोड़े थोड़े थोड़े हल्का,
1: है। हाँ
0: यू एक्सपेक्ट दिस एक्सपेक्ट विश्वास।
1: हाँ।